0: सिटी फेस हाउस दुलेगौड़ा प्रोप्राइटर तीर्थराज गर्तौला फोन 0635 590 065 मोबाइल 98161634372।
1: एक सय तीन थोप्लो आठ।

0: मार्बल का सीपी पीसी प्रोडक्ट अमेरिकन लाइसेंस अंतर्गत उत्पादित अरू भन्दा 25% बढी प्रेसर वहन गर्न सक्ने क्षमता का साथ 50 वर्ष भन्दा बढी विश्वभरि रुचाइएको एनएसएफ अमेरिका द्वारा प्रमाणित फ्लोगार्ड ब्रांड साथै मार्बल का यूपीपीसी प्रोडक्ट लेड फ्री यूवी रेसिस्टेंट र हाई इम्प्याक्ट स्ट्रेंथ भएको
1: सुरक्षा घरको साथ जीवन भरको
2: यो हो हाहा संचार नेटवर्क समयको आवाज।